सुप्रभात, ये आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है, FM 103.3 MHz पर। आज दिन है मंगलवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58.40 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे मुंबई केंद्र, जहां से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और 200 रूपये के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से आप मिलने से चूक जाएंगे। यानी हमें समय निकालकर अपने मन की बात को सुनना चाहिए, अपने मन से बातें करना चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का में ये भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 249। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनेगा श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। भाग दूसरा। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:00 से 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। इसके अंतर्गत सुनेगा प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां। इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग प्रस्तुत करता है सुबैर खान। ग्यारह बजे से रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 सखी सहेली। इसके अंतर्गत सुनेगा डिजिटल होते रिश्ते मुहावरों की दुनिया। मुंह में राम बगल में छुरी। सखी विशेष के अंतर्गत उपासना टाकू फिनटेक कंपनी मोबीक्विक की सह संस्थापक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से बातचीत और हल्की फुल्की बातें। सेहतमंद भोजन सुनिएगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4:00 पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। शाम 5:30 पर ताराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 शाम सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार गायिका विदुषी आरती अंगलीकर का भाग दूसरा। प्रस्तुति रूपाली रूपक की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8:00 सुनिए प्रहसन। बा जाए ऐसे फैशन से। लेखन नाजनीन का। निर्देशन है जयदेव शर्मा कमल का। ₹8:15 पर चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10:00 छाएगी। 10:30 पर ढलती जाए रात। और रात 11:00 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 249।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में सुनिए राग पूर्वी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था पूर्या दनाश्री, बहुत ही खूबसूरत राग है। आज उन्हीं स्वरों में हम शुद्ध मध्यम को जोड़ देंगे तो बन जाएगा राग पूर्वी का सप्तक। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया है, स्वर वही है पूर्या धनाश्री के, उसमें हमने सिर्फ शुद्ध मध्यम को जोड़ देने से कितनी खूबसूरत कलाकृति बन रही है। इसमें रिखब और धैवत कोमल हैं, दोनों मध्यम हैं, तीव्र और शुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं ये संधि प्रकाश राग है, इसमें अन्य सभी जो स्वर हैं शुद्ध हैं, वर्जित स्वर कोई भी नहीं। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार और संवादी निखात। गायन का समय वही जो संधि प्रकाश रागों का होता है। राग पूर्या धनाश्री से इसको इस तरह से हम अलग रख सकते हैं कि पूर्या धनाश्री का जो सप्तक है वो नीरे गा जाता है और

राग पूर्वी का जो चलन है वो पूर्या धनाश्री से किस तरह अलग है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हालांकि इसमें शुद्ध मध्यम के होने के कारण इसकी एक अलग छवि बनती जरूर है, लेकिन इसका जो चलन जाता है

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसी फिल्मी गीत की रचना एक राग को आधार बनाकर की जाती है, मगर उसमें अन्य रागों की छाया भी अक्सर दिखती है। आइए सुने ये गीत जो हमने फिल्म कोतवाल साहब से चुना है। इस गीत में संगीतकार रविंद्र जैन ने राग पूर्वी को आधार बनाकर किस खूबसूरती से अन्य रागों का भी सम्मिश्रण किया है। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आवाज है आशा भोसले की। लीजिए गीत सुनिए।

0: आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में राग पूर्वी पर आधारित संगीतकार रविंद्र जैन की ये सुमधुर रचना। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको बज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं छोटे बाबू फिल्म के इस गीत से।

उनका गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और इस गीत को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना उसे हमने छोटे बाबू फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाजें थी, इंदिवर की रचना थी और मदन मोहन का संगीत था। अभी आपने गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत सुना। आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन को। उनकी भावपूर्ण और मधुर धुनें हमारे दिलों को सदैव हमेशा आकर्षित करती हैं। ये कर्णप्रिय संगीत हमारी अमूल्य धरोहर है। सुनते हैं ये गीत।

0: भाई भाई फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गीता दत्त की आवाज थी। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, मदन मोहन ने धुन बनाई थी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

0: बैंक मैनेजर फिल्म का गीत आपने सुना, मन्ना डे के स्वर में अनवर फरूखाबादी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदा

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

संगीतकार रोशन के सजाए संगीत से ये गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था प्रेम धवन ने और हीरा मोती फिल्म का ये गीत था। आवाजें सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार रोशन को। संगीतकार रोशन अपनी मधुर शास्त्रीयता, सरलता से परिपूर्ण धुनों से संगीत जगत को उन्होंने अमूल्य विरासत दी है। एक और मीठा सा गीत आइए सुनते हैं।

मैंने जीना सीख लिया। इस फिल्म का गीत अभी आप मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुन रहे थे। रचना आनंद बख्शी थी। इस गीत को संगीतकार रोशन ने संगीत से सजाया था। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था रंगीन रातें फिल्म से था। शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजें थी। केदार शर्मा के बोल थे और रोशन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का शुरुआत इस गीत से।

कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो, हम याद करते हैं। मल्हार फिल्म का ये बहुत ही मीठा सा गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। कैफी आजमी ने बोल लिखे थे और रोशन ने इस गीत को संगीत से संवारा था। नमन है संगीतकार रोशन को, जिनके गीतों की ताजगी, भाव और मिठास दिल को छू लेते हैं। अगला गाना बरसात की रात फिल्म से लीजिए।

ये बरसात की रात, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बरसात की रात फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीतकार साहिल लुधियानवी थे और संगीतकार थे रोशन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में चित्रलेखा फिल्म का गीत। शब्दकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था चित्रलेखा, साहिल लुधियानवी के बोल थे और रोशन का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं।

0: चंदन का एहसास।
1: पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: आ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
5: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
6: सुनिए।
7: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में अब समय है एक बहुत छोटे से अंतराल का।

0: मेरी का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजा ये हीर रांझा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कैफी आजमी ने बोल लिखे थे, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण की ये रचना सुनिए मदन मोहन के बनाए संगीत पर।

रहा आकाश फिल्म का गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था, मदन मोहन ने तर्ज बनाई थी। इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना था उसे हमने हीर राजा फिल्म से लिया था। आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है इसे मदन मोहन ने। अब आपको ये गीत सुनवा रहे हैं नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे फिल्म का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
3: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्ट एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित

0: छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमरीका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मुज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा

0: के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है? कश्मीर के पहाड़ों पर दो दशकों में लगभग एक डिग्री बढ़ा तापमान हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

कि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है। शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अपने आसपास की ऊंची जमीन से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है और तब शहर हो या गांव, पानी की समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें श्रेया घोषाल, जावेद बसीर की थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था। शंकर एहसान लॉय ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लुटेरा फिल्म का ये गीत।

0: लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज मोनाली ठाकुर की थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श।

0: निशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

Sagamos.

श्रेया घोषाल और एमजी श्रीकुमार की आवाजों में समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे प्रीतम और फिल्म का नाम था भूल भुलैया। ये है गुरु फिल्म का गीत।

0: हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में गुरु फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे A.R. रहमान।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद फिर से सुनिएगा।

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजशेखर और संगीतकार कृष्णा। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। सुनते हैं बाकी गीत।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध।

सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: किसे?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

संगीतकार रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार केदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नैन में संगीत दिया। बावरे नैन के निर्माता थे गायक मुकेश।

सतीश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

1960 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीत का रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार
2: FM 103.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे FM मुख्य समाचार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करें। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लाइव ऑनलाइन क्लास के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज होने वाली बैठक और चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी नक्सली रविंद्र गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में माओवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 3,87,00,000 रुपए मूल्य की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। और पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र ने राजकीय श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, चिकित्सा व्यवस्था सहित अन्य सभी पहलुओं की समीक्षा की। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी कर दिए हैं। ओएमआर चुनौती सुविधा कल तक उपलब्ध रहेगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एफएम मुख्य समाचार। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। झारोखा के अंतर्गत अब से कुछ ही देर में यानी 10:05 पर आप सुनेंगे एफएम हंगामा। क्रीड़ा जगत इस कार्यक्रम का समय होगा 10:30 से। 11:00 और 11:58 पर आप सुनेंगे एफएम मुख्य समाचार। आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके गीत इस कार्यक्रम का समय होगा 11:02 से।

दिन के 12 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 का समय होगा यादों की महफिल का। सुरीला सफर इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे दिन के 1 बजे से। त्रिवेणी का समय होगा दोपहर 2 बजे और 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 2:30 से।

महिलाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम सखी सहेली। इस कार्यक्रम का समय होगा 3 बजे से और 4 बजे से आप सुनेंगे पिटारा सेल्यूलॉइड के सितारे। छाया गीत कार्यक्रम का समय होगा शाम के 5 बजे और 5:30 पर आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्मी गीत तराने नए पुराने में।

शाम के 6 बजे से आप सुनेंगे हिंदी समाचार और आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन, इसे आप सुनेंगे शाम के 6:30 से। जय माला, इस कार्यक्रम का समय होगा 7 बजे।

इंद्रधनुष में आप सुनेंगे आज पॉप एक्सप्रेस और इस कार्यक्रम का समय होगा 7:45 से। लघु नाटकों का हमारा संग्रह हवा महल, इसे आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से।

8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या फिल्मी संगीत का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रात्रि 9 बजे से और 9:30 का समय होगा कार्यक्रम आज के फनकार। छाया गीत इस कार्यक्रम का आप सुनते हैं रात्रि 10 बजे से और 10:30 पर रंग तरंग का कार्यक्रम ढलती जाए रात। रात्रि के 11 बजे से आप क्रमशः हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। अभी आप ले रहे थे जानकारी दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में छड़ोखा के अंतर्गत। हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 103.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम एफएम हंगामा में और आज के एफएम हंगामा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम रेडी फिल्म के इस गाने के साथ। अमृता का कौर्मिका सिंह की आवाजों में रेडी फिल्म का ये गाना, संगीत दिया है देवी श्री प्रसाद ने और इस गाने को लिखा है आशीष पंडित ने।

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

मोहित चौहान, प्रीतम और पलक मुच्छल की आवाजों में भी आप सुन रहे थे फिल्म बजरंगी भाईजान से ये प्यारा सा गाना। संगीत दिया था प्रीतम ने और उस गाने को लिखा था मयूर पुरी ने। कार्यक्रम एफएम हंगामा आगे जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा विराम।

0: संग हर पल चंदन का एहसास।
1: सुबह जलाओ शाम
2: जलाओ
3: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
4: विराम के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम एफएम हंगामा में। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अलीशा चिनॉय और जुबीन गर्ग की आवाजों में फिल्म क्रिश 3 से ये गाना। संगीत राजेश रोशन का और गाने को लिखा है समीर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म किक से ये गाना, और इसी गाने के साथ आज का एफएम हंगामा प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए अपनी दोस्त को इस कार्यक्रम से इजाजत।

0: के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो चुके हैं। इस वक्त आप सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। कार्यक्रम क्रीड़ा जगत को सुनने से पहले लीजिए सुनिए यह संदेश।
1: HIV एक विषाणु है जिसका संक्रमण HIV संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। HIV एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0907 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
3: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
3: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
3: समझ गया।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का साप्ताहिक खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। खेल की दुनिया हर दिन नए रोमांच, नए रिकॉर्ड और नई चुनौतियों की कहानी लिखती है। आज के अंक में भी हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की खेल जगत की ऐसी बड़ी खबरें जिन पर पूरे खेल जगत की निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय T20 क्रिकेट की। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। आखिर लगातार हार की वजह क्या रही? क्या ये सिर्फ खराब फॉर्म है या रणनीति में बदलाव की जरूरत? इस पर होगा तथ्यपूर्ण और तुलित विश्लेषण। इसके बाद रुख करेंगे बिबल डल 2026 का, जहां महिला वर्ग को नई चैंपियन मिल चुकी है। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा है। वहीं पुरुष वर्ग के फाइनल पर भी रहेगी हमारी खास नजर। फिर बात होगी फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल की। विश्व फुटबॉल की चार महाशक्तियां फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने हैं। जानेंगे इन टीमों की रणनीति, ताकत, प्रमुख खिलाड़ियों और रोमांचक मुकाबलों की पूरी कहानी। और अंत में चर्चा होगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच में स्मृति मांदना की शानदार बल्लेबाजी और युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के दमदार प्रदर्शन ने भारतीय महिला क्रिकेट की नई ताकत का एहसास कराया। इस मुकाबले के साथ साथ आगे की चुनौतियों और संभावनाओं पर भी होगी विशेष चर्चा। तो आइए खेल के इन सभी बड़ी खबरों, रोचक विश्लेषण और दिलचस्प तथ्यों के साथ शुरू करते हैं क्रीड़ा जगत। भारतीय क्रिकेट के लिए पिछले कुछ सप्ताह किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। पहले आयरलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीम के खिलाफ T20 श्रृंखला गंवाना और उसके बाद इंग्लैंड के हाथों व्हाइट वॉश, ये सिर्फ दो हार नहीं बल्कि भारतीय T20 क्रिकेट के सामने खड़े गंभीर सवालों की कहानी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाने वाली भारत लगातार लड़खड़ाती नजर

आई, आइए तथ्यों और तर्कों के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात बल्लेबाजी की। भारतीय बल्लेबाज का दृष्टिकोण आधुनिक T20 क्रिकेट के अनुरूप नहीं दिखा। आज का T20 पहले 6 ओवर्स में मैच की दिशा तय कर देता है। इंग्लैंड जैसी टीम शुरू से आक्रमण खेलती है, जबकि भारतीय बल्लेबाज अक्सर शुरुआत में विकेट बचाने की सोच में फंस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बीच के ओवर्स में रन गति बढ़ाने का दबाव आता है और विकेट लगातार गिरते हैं। दूसरी बड़ी समस्या रही मिडिल ऑर्डर्स की अस्थिरता। हर मैच में अलग अलग बल्लेबाजों से उम्मीद की गई, लेकिन कोई भी लगातार जिम्मेदारी नहीं निभा सका। बड़े स्कोर का पीछा हो या सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना, टीम को ऐसा बल्लेबाज नहीं मिला जो अंत तक टिक कर मैच निकाल सके। अब बात गेंदबाजी की। भारत की गेंदबाजी में सबसे बड़ी कमी डेथ ओवर्स में दिखाई दी। अंतिम 4-5 ओवर्स में लगातार रन लुटे। यॉर्कर की जगह फुलटॉस और स्लॉट गेंदें फेंकी गई, जिसका इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। दूसरी ओर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण रखा और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फील्डिंग भी चिंता का विषय रही। आसान कैच छूटे, रनआउट के मौके गंवाए गए और मैदान पर वो ऊर्जा नहीं दिखी जिसके लिए भारतीय टीम कभी जानी जाती थी। आधुनिक क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं बल्कि फील्डिंग भी मैच जिताती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ खिलाड़ियों की खराब फॉर्म है? शायद नहीं, ये रणनीति का भी मामला है। पिछले कुछ समय में भारतीय टीम लगातार प्रयोग कर रही है। कभी ओपनिंग जोड़ी बदल रही है, कभी मिडिल ऑर्डर्स, कभी गेंदबाजी संयोजन। प्रयोग जरूरी है, लेकिन लगातार बदलाव खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी प्रभावित करते हैं। T20 क्रिकेट में खिलाड़ियों को स्पष्ट भूमिका चाहिए। किसे पावर प्ले में आक्रमण करना है, किसे पारी संभालनी है और किसे अंत तक मैच खत्म करना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। इंग्लैंड की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही रहा। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह जानता है और उसी के अनुसार खेलता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिकता। भारत के कई खिलाड़ी IPL में बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वही खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा सतर्क नजर आते हैं। आधुनिक T20 क्रिकेट में डर कर खेलने की कोई जगह नहीं। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो फिर बड़े लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। क्या इसका मतलब भारतीय क्रिकेट संकट में है? बिल्कुल नहीं। भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं। युवा खिलाड़ियों की लंबी कतार है, मजबूत घरेलू ढांचा है और दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धा T20 लीग IPL भी है। जरूरत है सही खिलाड़ियों को लगातार मौके देने की, टीम में स्थिरता लाने की और खिलाड़ियों को बिना डर के खेलने की आजादी देने की। साथ ही चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को यह तय करना होगा कि भविष्य की टीम तैयार कर रहे हैं या हर श्रृंखला में नए प्रयोग कर रहे हैं। दोनों बातें एक साथ लंबे समय तक नहीं चल सकती। आने वाले महीनों में भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। यदि अभी इन कमियों पर काम नहीं किया गया तो आगामी ICC टूर्नामेंट में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट का इतिहास बताता है कि यह टीम मुश्किल दौर से निकलना और मजबूत होकर लौटना जानती है। यही उम्मीद इस बार भी रहेगी। हार कभी कभी आईना भी होता है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिली लगातार हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक चेतावनी है। अब ये टीम प्रबंधन, चयनकर्ताओं और खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा कि वे इस चेतावनी को समय रहते समझते हैं या नहीं। अगर सीख सही मिली तो यही हार भविष्य की बड़ी जीत की नींव भी बन सकती है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस की दुनिया में इन दिनों सारी निगाहें लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड क्लब पर टिकी है, जहां घास की कोर्ट पर खेला जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम विंबलडन संपन्न हुआ। महिला एकल वर्ग को इस साल एक नई चैंपियन मिल चुकी है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी हमवतन कोरोलिना मुचोवा को रोमांचक मुकाबलों में 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। लेकिन यह मुकाबला सिर्फ एक फाइनल नहीं था बल्कि धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की मिसाल थी। पहला सेट पूरी तरह नोस्कोवा के नाम रहा। दूसरे सेट में वे कई बार चैंपियनशिप के बेहद करीब पहुंची, लेकिन दबाव में लगातार मौके गवा बैठी और कोरोलिना मुचोवा ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को तीसरे सेट तक खींच दिया।
लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में

खुद को संभाल ले। तीसरे और निर्णायक सेट में नोस्कोवा ने बेहतरीन वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। दोनों खिलाड़ी एक ही देश चेक गणराज से थी, ऐसे में ये मुकाबला केवल खिताब का नहीं बल्कि चेक टेनिस की शानदार परंपरा का भी उत्सव बन गया। पिछले कुछ वर्षों में चेक महिला खिलाड़ियों ने विंबलडन में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और नोस्कोवा की जीत उसी विरासत को आगे बढ़ाती है। महिला वर्ग में नया इतिहास रचने के बाद अब रुख करते हैं पुरुष एकल वर्ग की ओर। टेनिस की दुनिया में एक नया युग तेजी से आकार ले रहा है और इस युग का सबसे चमकता सितारा है इटली के 24 वर्षीय यानिक सीरन। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सीरन ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए विंबलडन 2026 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को 4 सेटों के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरा विंबलडन और अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। यानिक सीरन की सबसे बड़ी खासियत है उनका शांत स्वभाव। कोर्ट पर ना कोई अनावश्यक आक्रोश, ना ही भावनाओं का प्रदर्शन, सिर्फ सटीक रणनीति, दमदार सर्विस और बेहतरीन बेसलाइन खेल। यही कारण है कि उन्हें आज आधुनिक टेनिस का सबसे संतुलित खिलाड़ी माना जा रहा है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि सीरन बचपन में टेनिस नहीं बल्कि स्किंग के बेहतरीन खिलाड़ी थे। बाद में उन्होंने टेनिस को अपना करियर चुना और आज वे इटली के सबसे सफल खिलाड़ी में गिने जाते हैं। इस विंबलडन में उनका सफर भी शानदार रहा। सेमीफाइनल में उन्होंने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराया और फाइनल में ज़ेवरेव के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी कर यह साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी दबाव में और मजबूत होकर उभरते हैं। 24 वर्ष की उम्र में 5 ग्रैंड स्लैम जीतकर यानिक सीरन ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले वर्षों में पुरुष टेनिस पर उनका दबदबा और मजबूत हो सकता है। कई विशेषज्ञों ने उन्हें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बाद की पीढ़ी का सबसे बड़ा सितारा मान रहे हैं। संघर्ष, अनुशासन और निरंतरता, यही है यानिक सीरन की सफलता का मंत्र। 24 साल की उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना हर टेनिस खिलाड़ी देखता है। अब दुनिया की नजरें इस युवा चैंपियन पर है कि आने वाले वर्षों में और कितने इतिहास रचता है। अब जरा विंबलडन की उस खास परंपरा की बात कर लें जो इसे दुनिया की बाकी ग्रैंड स्लैम से अलग बनाती है। क्या आप जानते हैं विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। यहां आज भी खिलाड़ी सफेद रंग के ड्रेस पहनते हैं और यह नियम इतना सख्त है कि खिलाड़ियों के कपड़ों पर दूसरे रंग की मात्रा भी बेहद सीमित होती है। यही परंपरा विंबलडन की पहचान है। विंबलडन की एक और खास बात है इसकी प्राकृतिक घास की कोर्ट। आज चारों ग्रैंड स्लैम अलग अलग सतहों पर खेली जाती है लेकिन घास का कोर्ट केवल विंबलडन की पहचान है। घास पर गेंद की रफ्तार तेज होती है और उछाल अपेक्षाकृत कम, इसलिए यहां सर्विस, नेट प्ले और तेज रिफ्लेक्स सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। दर्शकों के बीच बैठकर स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाना भी विंबलडन की सदियों पुरानी परंपरा है। हर साल हजारों किलो स्ट्रॉबेरी और क्रीम दर्शकों के बीच परोसी जाती है। विंबलडन केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि खेल संस्कृति, अनुशासन और परंपरा का उत्सव है। यहाँ हर जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाती है। अब बात दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती 4 साल का सपना तोड़ सकती है और एक शानदार गोल पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर सकता है। 48 टीमों के साथ शुरू हुआ ये विश्व कप अब सिर्फ 4 दिग्गजों तक सिमट चुका है, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। खास बात यह है कि पहली बार विश्व कप इतिहास में फीफा की शीर्ष 4 रैंकिंग वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है। पहला सेमीफाइनल होगा फ्रांस और स्पेन के बीच जबकि दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होगी इंग्लैंड और अर्जेंटीना। दोनों मुकाबले किसी फाइनल से कम नहीं माने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की।
दुनिया की नंबर एक टीम फ्रांस इस विश्व कप में बेहद संतुलित नजर आ रही है। कोच दिदिये देंसा की टीम ने

आक्रमण और रक्षा दोनों विभागों में बेहतरीन तालमेल दिखाया है। कप्तान किलियन एम्बापे एक बार फिर अपनी रफ्तार, फिनिशिंग और निर्णायक मौकों पर गोल में बदलने की कला से विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे चल रहे खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले और माइकल ओलिसे जैसे खिलाड़ी फ्रांस के आक्रमण को और भी धार देते हैं। अब बात करते हैं स्पेन की। अगर फ्रांस ताकत और गति का नाम है तो स्पेन तकनीक और धैर्य की पहचान है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत है उसका टिकी टका फुटबॉल, छोटे छोटे पास, गेंद पर नियंत्रण और विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखना। युवा स्टार लामिन यामाल इस विश्व कप के सबसे बड़े आकर्षण बनकर उभरे हैं, जबकि अनुभवी कप्तान अल्बारो मोराटा टीम को नेतृत्व दे रहे हैं। मिडफील्ड में स्पेन का नियंत्रण किसी भी टीम के लिए चुनौती है। अब रुख करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की ओर। ये मुकाबला सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि इतिहास, जुनून और प्रतिद्वंदिता की कहानी है। इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना। इन दोनों देशों के बीच विश्व कप की कई यादगार मुकाबले खेले जा चुके हैं। डिएगो माराडोना का हेड ऑफ गार्ड गोल हो या 1998 का रोमांचक मैच, हर बार ये मुकाबला इतिहास बना है। इंग्लैंड की बात करें तो कप्तान हैरी केन अनुभव का बड़ा नाम है, लेकिन इस विश्व कप में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है जूड बेलिंगहैम ने। बेलिंगहैम ने क्वार्टर फाइनल में 2 गोल कर टीम को जीत दिलाई और इस समय इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की ताकत है उसका मजबूत मिडफील्ड, हवाई गेंदों पर शानदार पकड़ और सेट पीस से गोल करने की क्षमता। दूसरी ओर है मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना। पूरी दुनिया की नजरें इस बार फिर लियोनेल मेसी पर है। शायद ये मेसी का आखिरी विश्व कप हो और वो इसे एक और खिताब के साथ यादगार बनाना चाहेंगे। मेसी सिर्फ गोल नहीं करते बल्कि पूरे खेल की दिशा बदल देते हैं। उनके साथ है जूलियन अल्वारेज, लोतारो मार्टिनेज और एलेक्सिस मैक एलिस्टार जैसे खिलाड़ी अर्जेंटीना को बेहद संतुलित टीम बनाते हैं। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत है दबाव में भी संयम और बड़े मैच का अनुभव। अगर रणनीति की बात करें तो फ्रांस तेज काउंटर अटैक पर भरोसा करता है, स्पेन गेंद पर कब्जा रखकर विरोधी को थकाता है। इंग्लैंड शारीरिक मजबूती और सेट पीस में माहिर है और अर्जेंटीना मेसी की रचनात्मकता के साथ सामूहिक फुटबॉल खेलती है। यही वजह है कि दोनों सेमीफाइनल पूरी तरह अलग अंदाज के मुकाबले होंगे। अब एक दिलचस्प तथ्य, इस बार विश्व कप में कोई भी टीम संयोग से यहां तक नहीं पहुंची है। चारों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन कर अपनी जगह बनाई है और चारों पहले भी विश्व कप जीत चुकी है। यानी इस बार ट्रॉफी किसी नए देश के पास नहीं जाएगी बल्कि एक पुराना चैंपियन ही फिर से विश्व फुटबॉल का बादशाह बनेगा। पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इन दोनों मैचों के विजेता 19 जुलाई को फाइनल में आमने सामने होंगे। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि कौन जीतेगा। सवाल यह भी है, क्या मेसी अपने करियर में एक और विश्व कप फाइनल खेलेंगे? क्या एम्बापे फ्रांस को फिर विश्व विजेता बनाएंगे? क्या यामाल स्पेन के लिए नया इतिहास लिखेंगे या फिर हैरी केन इंग्लैंड का 6 दशक लंबा इंतजार खत्म करेंगे? इन सवालों का जवाब अगले 2 मुकाबलों में मिलेगा। अब जिक्र उस भारतीय महिला टीम की जिसने लॉर्ड्स की ऐतिहासिक धरती पर अपने जज्बे, अनुशासन और बेहतरीन खेल से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय महिला क्रिकेट इन दिनों एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। ये मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट मैच आयोजित किया गया है और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय खिलाड़ियों ने यादगार प्रदर्शन किया है। इस मुकाबले की शुरुआत भारत की अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मांदना ने शानदार बल्लेबाजी से की। उन्होंने दोनों पारियों में धैर्य और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरी पारी में उनकी अर्धशतकीय पारी ने भारत को बड़ी बढ़त दिलाने की मजबूत नींव रखी। स्मृति की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह रही, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को छोड़ने का धैर्य और खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजने की कला।
टेस्ट क्रिकेट में यही परिपक्वता बड़े बल्ले

बल्लेबाजों की पहचान होती है। लेकिन इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी खोज रही युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़। क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वो लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला तेज गेंदबाज बनी। उनकी गेंदबाजी में गति, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ का शानदार मेल देखने को मिला। उन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया और भारत को मैच में निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। एक और बड़ी उपलब्धि रही यास्तिका भाटिया की। दूसरी पारी में उन्होंने शानदार शतक जड़कर लॉर्ड्स में महिला टेस्ट इतिहास का पहला शतक बनाने का गौरव हासिल किया। उनकी इस पारी ने भारत की बढ़त को 450 रन से आगे पहुंचा दिया और इंग्लैंड पर जीत का दबाव कई गुना बढ़ा दिया। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी पूरे मैच में आक्रमण कप्तानी की। गेंदबाजों का प्रभावी इस्तेमाल, सही समय पर फील्ड में बदलाव और लगातार आक्रमण की रणनीति ने इंग्लैंड को वापसी का मौका नहीं दिया। अनुभवी स्पिनर स्नेहा राणा और दीप्ति शर्मा ने भी दूसरे छोर से दबाव बनाए रखा। अगर इस टेस्ट से भारत की सबसे बड़ी सीख देखें तो वो है युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार संतुलन। एक और स्मृति मानदना जैसी अनुभवी बल्लेबाज हैं, तो दूसरी ओर क्रांति गौड़ और यास्तिका भाटिया जैसे युवा खिलाड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। यही संतुलन भारतीय महिला क्रिकेट का भविष्य और मजबूत बनाता है। अब बात आगे की। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैच के बाद भारतीय महिला टीम एक दिवसीय श्रृंखला खेलेगी। यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आने वाले ICC टूर्नामेंट की तैयारी के लिहाज से हर मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। टीम चाहेगी टेस्ट की इस शानदार लय को वनडे क्रिकेट में भी बरकरार रखा जाए। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में आज बात उस खिलाड़ी की जिसकी मौजूदगी भर से विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति सतर्क हो जाती है, जिसकी रफ्तार, ताकत और गोल करने की क्षमता ने उसे विश्व फुटबॉल के सबसे खतरनाक स्ट्राइकरों में शामिल कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड की। 24 वर्षीय अर्लिंग हालैंड का जन्म 21 जुलाई 2000 को इंग्लैंड के लिड्स शहर में हुआ। उनके पिता अल्फ इगे हालैंड भी पेशेवर फुटबॉलर रहे हैं। बचपन से ही हालैंड की पहचान उनकी असाधारण शारीरिक क्षमता, तेज रफ्तार और गोल के सामने बेहतरीन फिनिशिंग के लिए होने लगी थी। रेड बुल साल्ज़बर्ग, बोरुसिया डॉर्टमुंड और फिर मैनचेस्टर सिटी तक का उनका सफर लगातार रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा। क्लब फुटबॉल में उन्होंने गोल करने की ऐसी आदत बना ली कि उन्हें दुनिया भर में गोल मशीन कहा जाने लगा। लेकिन इस बार फीफा विश्व कप 2026 में हालैंड ने वो कर दिखाया जिसका नॉर्वे के प्रशंसक वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लगभग 28 वर्षों के बाद नॉर्वे ने विश्व कप में वापसी की और इस शानदार अभियान में सबसे बड़े नायक बने एर्लिंग हालैंड। विश्व कप के पहले ही मुकाबले में इराक के खिलाफ हालैंड ने 2 गोल दागकर नॉर्वे को 4-1 से जीत दिलाई। इसके बाद सेनेगल के खिलाफ भी उन्होंने 2 गोल किए और अपनी टीम को नॉकआउट चरण में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनका सबसे यादगार पल आया ब्राजील के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के विरुद्ध हालैंड ने 2 शानदार गोल दागे। खास तौर पर उनका दूसरा गोल शानदार नियंत्रण, ताकत और सटीक फिनिशिंग का बेहतरीन उदाहरण था। इस गोल को फीफा ने राउंड ऑफ 16 का हुंडई गोल ऑफ द राउंड चुना। हालांकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ नॉर्वे का सफर समाप्त हो गया, लेकिन हालैंड का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चर्चाओं में रहा। नॉर्वे भले ही सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका, लेकिन इस टीम ने दुनिया को यह संदेश जरूर दिया है कि अब विश्व फुटबॉल की नई ताकत बनकर उभर रही है। अब बात करते हैं हालैंड की सबसे बड़ी ताकत की। लगभग 1.95 मीटर लंबे हालैंड अपने शारीरिक मजबूती, विस्फोटक गति और हवा में शानदार खेल के लिए जाने जाते हैं। बॉक्स के अंदर अपनी पोजीशनिंग इतनी सटीक होती है कि उन्हें एक छोटा सा मौका भी मिल जाए तो वो उसे गोल में बदल देते हैं। उनका बायां पैर बेहद खतरनाक है, लेकिन हेडर और दाएं पैर से भी उतने ही प्रभावी हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई कोच उन्हें मौजूदा दौर का सबसे घातक नंबर 9 स्ट्राइकर मानते हैं।
एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि हालैंड गोल करने के बाद अक्सर ध्यान मुद्रा यानी मेडिटेशन सेलिब्रेशन करते हैं। उनका मानना है कि मानसिक शक्ति और एकाग्रता ही बड़े खिलाड़ियों की

सबसे बड़ी ताकत होती है। खास खास खबरों में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत की शूटर नीरू ढाडा ने ट्रैप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हरियाणा की नीरू ने फाइनल मुकाबले में जबरदस्त निरंतरता दिखाते हुए 30 में से 27 सटीक निशाने लगाए और शीर्ष स्थान हासिल किया। 26 साल की नीरू वर्ल्ड कप में इंडिविजुअली ट्रैप गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वे इस साल एशियन गेम में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। क्रीड़ा जगत के आज के इस अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार, फिर मिलेंगे खेल जगत की नई खबरों, नए रिकॉर्ड और नई उपलब्धियों के साथ।

अभी आप सुन रहे थे खेल पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से प्रसारित किया गया था। आपने ट्यून इन किया है FM 103.3 MHz पर आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र को।

श्रोताओं, 11 बजे से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके गीत। 11:58 पर सुनेंगे FM मुख्य समाचार। दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल, सुरीला सफर। इस कार्यक्रम का समय होगा दिन के 1 बजे से। ये थी कुछ मुख्य कार्यक्रमों की झलकियां। हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.3 MHz पर। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे FM मुख्य समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं एफएम मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। लातेहार जिला पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंदर गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविंदर गंजू पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसमें झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवम्बर 2019 को

चंदवा के लुकुइया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। झारखंड में माओवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 3,87,00,000 रुपए मूल्य की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड को लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चाईबासा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के पास डीएमएफटी मद में लगभग 3,700 करोड़ रुपए जमा हैं। उन्होंने कहा कि जिले में डीएमएफटी के माध्यम से प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए से अधिक की आय होती है, लेकिन इसके बावजूद जिले में विकास कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं दिखाई देते। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज होने वाली बैठक और चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की। और रांची में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और रथ मेला को लेकर 16 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। रांची ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 11:58 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

गीत गाया पत्थरों ने। अब आइए आप सभी को हम सुनवाएं ये गीत और फरमाइश आप सबने की है। आप सब हिनू रांची से परवीन कुमार, उनके साथी कुटे से मनीष यादव, दीप यादव, रूबी आशा और उनके घर के अन्य लोग, और ग्राम पोस्ट पुस्ती झालदा पुरुलिया पश्चिम बंगाल से निखिल कुमार और उनके बहुत सारे दोस्त।

और साथियों, अब आइए हम आप सबको सुनवाएं ये गीत। आप सब हैं राज नांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान, इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबाद तिवारी और उनके घर के अन्य लोग, और घाटशिला से हैं कॉलेज रोड घाटशिला से संतोष कुमार भगत और उनके घर के अन्य लोग। फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो जो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: बच्चों, भूत बाबा की मुझे कहाँ गई? क्या पेड़ के साथ मुझे भी कट गई? चलो इसी बात पे मजाक डाली।
1: अरे ये तो मर्दों की खेती है, जब जी में आग बढ़ा लिया, जब जी में आग कटवा लिया। तो बच्चों बजाओ ताली, चल दिखा दे मेरे राजा को तमाशा। तमाशे वाली
0: तमाशे वाली तमाशे वाली क्या करता है रे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मेरा नाम तो फूलमती है, फूलमती।
1: अरे फूलमती हो या मधुमती, चल बच्चों को तमाशा दिखा।
0: पहले पैसे निकाल।
1: अरे निकालता हूँ, पहले बच्चों को तमाशा तो दिखा।
0: आ जा।

दुश्मन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे साथियों, आवाज़ थी लता मंगेशकर की और पसंद आप सब की, आप सब थे नया पारा, भीरे से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज ईश्वर राज सूर्यवंशी, चंद्रकांत प्राची सूर्यवंशी और साधना सूर्यवंशी, और आप सब थे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित और उनके घर के अन्य लोग। अगला गाना जो हम आप सभी को सुनवाएंगे, आप सब हैं ग्राम दिगवार रांची रोड रामगढ़ कैंट से अर्जुन राम, राधा रानी, रानी पल्लवी और उनकी ढेर सारी सहेलियाँ, और बनसिया सिले से राम वृक्ष महतो, उनके बहुत सारे दोस्त, और कुड़ू जिला लोहरदगा से विपिन पेंटर, कार्तिक कुमार, मिठी गुप्ता और प्रतिमा गुप्ता।

आप लता मंगेशकर के स्वर में ये गाना सुन रहे थे। फिल्म थी राजा जानी। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और मेरा साया। अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं इस फिल्म का ये गीत। इसके लिए आप सबने पसंद किया है। आप सब हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर रही महराज जहां, और बहादुर पूरा नागपुर से हैं शैलेश वैशाली सुमित श्वेता और उनके घर के अन्य लोग। इतवार बाजार कॉलोनी रातू रांची से सज्जानंद दुबे नटवर निर्मोही कुमार दिवाकर और उनके बहुत सारे दोस्त।

बरेली के बाजार में झुमका गिरा रही। आप मेरा साया फिल्म का ये गाना सुन रहे थे साथियों, और इस वक्त आप फिल्मी गाने सुन रहे हैं। ये विविध भारती रांची केंद्र का प्रसारण है।

0: ये कपड़े देखिए।
1: रोटी कपड़ा और मकान, ये थी फिल्म जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर से, और पसंद आप सबकी थी। औरंगाबाद से राजेश, शीतल, राजदीप, राशि और उनके घर के अन्य लोग, और महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति रेयांश और गुड़िया ठाकुर। अगला गाना जो आप सब सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना है और फरमाइश आप सबकी है, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक वर्मा और झवेंद्र वर्मा, और आप सब हैं बड़ा बाम्बो सुपाई सैसे, देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा प्रकाश, ललित प्रधान और उग्रसेन प्रधान। आवाज है आशा भोसले और किशोर कुमार की।

अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार से ये गाना सुन रहे थे। फिल्म थी पेइंग गेस्ट। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। अनमोल मोती। अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं इस फिल्म का गाना, और इसके लिए फरमाइश आप सब ने की है। आप सब हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, प्रांजल, प्रतीक और रोशनी राय। चेपा कला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, साबिया ठाकुर और उनके घर के अन्य लोग, और जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान रहीम, इमरान रजा, आलम शेख, चांदनी और उनके घर के अन्य लोग।

0: साथियों, अनमोल मोती फिल्म का ये गाना सुन रहे थे और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। अब आप सुनिए मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस चार दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड को लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चाईबासा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के पास डीएमएफटी मद में लगभग 3700 करोड़ रुपए जमा हैं। उन्होंने कहा कि जिले में डीएमएफटी के माध्यम से प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए से अधिक की आय होती है, लेकिन इसके बावजूद जिले में विकास कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं दिखाई देते। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज होने वाली बैठक और चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की। दुमका में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में एक दिवसीय प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य शंकर हाजरा ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में युवाओं ने मेले में हिस्सा लिया। युवाओं को प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, पंजीकरण प्रक्रिया, उद्योग में प्रशिक्षण के अवसर तथा रोजगार की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 1:10 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार और अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नलिता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 300,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अक्रॉस 10 ऑफ द 11 एक्टिव
2: मिशन्स। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस चार दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने सरकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने। पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खां के बोल।

दिल नहीं है ना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई।

टुकड़े से जुल्फ जरा सर कंगा, मुखड़े से जुल्फ जरा सर कंगा, सुलझेगा प्यार उलझ में आऊंगा, पाके दिहाई बहुत बचताऊंगा, ऐसा सुकून कहाँ फिर पाऊंगा, और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मछली में छेद

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सबको पकड़ा। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 20 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: संगीतकार मदन मोहन के संगीत पर किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज के यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन की शास्त्रीयता। श्रृंगार समय पिता और बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है खजांची फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल।

Oh, no.

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

याद याद न आए मूर्तियाँ ये कैसी।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज लता मंगेशकर की, बोल कैफी आजमी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। सहे लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में गीतकार राजेंद्र कृष्णा।

हसीना। संगीतकार मदन मोहन के संगीत बत्ते की गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का पहला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो इबारत हमने पोस्ट की है वो सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि संगीत की अनेक विधाएं होती है। संगीत गजल के रूप में भी है और कव्वाली के रूप में भी। कई गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं। जब पसंद की बात हो तो सबके अपने ख्याल हैं। संगीत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि उसके बिना दिल नहीं लगता। संगीत के प्रति दिल में ऐसे अरमान, ऐसी दीवानगी कि सारी सारी रात उनकी याद सताती है। जब संगीत की शैली मधुर हो और कोमल हो, संयोजन सरल हो और भारतीय वाद्य यंत्रों का विशिष्ट प्रयोग हो तो गीत भावपूर्ण रूप में निकलता है। संगीत की कहां कोई सीमाएं होती है, पर खासियत इस बात में है कि उनकी मौलिक संगीत के दीवानों की निगाहों को न कारवां की तलाश होती है, ना वे उस बरसात की रात को जिंदगी भर भूल पाते हैं जब उन्होंने गरज कर सावन आते देखा। पसंदीदा संगीत कानों में पड़ते ही ख्याल आता है जो बात तुझ में है किसी और में नहीं। बताइए कौन से हैं आज के गीत। ये आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने इबारत पोस्ट की, आप लोगों ने इसे पढ़ा और बहुत सारी बातें आपने लिख करके भेजी संगीत के बारे में। जी आज दो महान संगीतकारों की याद का दिन है, संगीतकार मदन मोहन और संगीतकार रोशन। मदन मोहन के गीत तो हमने आपको यादों की महफिल इस कार्यक्रम में सुनवाए हैं। आज इस कार्यक्रम में यानी सुरीला सफर कार्यक्रम में संगीतकार रोशन के संगीत को हम याद करेंगे। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों के झरोखों से जीवंत हो उठती है। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, यह तो आत्मा की वो बेबाक आवाज है जो हर दीवाने के दिल को सीधे छू कर हौले से कह जाती है कि जो बात इस सुरमई एहसास में है वो कायनात की किसी और चीज में नहीं। एक साथी की बात है कि कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहतर शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत सिर्फ सात सुरों में बंधा नहीं होता। संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है और कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। प्रेमियों के लिए तो संगीत प्रेम की भाषा के व्याकरण जैसा है। अच्छा संगीत बेचैनी कम करता है। अच्छा संगीत सुनना उसकी रचनात्मक कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। बहुत सारी बातें हैं संगीत के बारे में कहने के लिए। आप रोशन के संगीत के बारे में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए पहला गाना सुनते हैं कार्यक्रम का, वल्ला क्या बात है, इस फिल्म का गाना। जी हाँ, कुछ संगीतकार बल्कि संगीत के बारे में हम कह सकते हैं, जब अच्छा संगीत हम सुनते हैं तो मन से यही बात तो निकलती है, वल्ला क्या बात है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गाना है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप हमें बता सकते हैं?

शम्मी कपूर और बीना रॉय पर फिल्माया गया यह गाना, क्या बात है। आप चाहे कितने ही परेशान हो, काम का कितना भी बोझ हो, या किसी और बात का मन में कोई उदासी हो, कोई टेंशन हो, कुछ इस तरह के गाने जब आप सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। यही तो संगीत का जादू होता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि सुरों की अनमोल साधना, लाइव ऑर्केस्ट्रा का वो सुनहरा दौर, आज जहां कंप्यूटर से संगीत बनता है, वहीं पुराने दौर का फिल्मी संगीत एक अद्भुत साधना था। 1950 से 80 के दशक में एक एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में 60 से 150 असली वाद्य यंत्र, वादक और गायक एक साथ लाइव बैठते थे। वहां कोई रीटेक या एडिटिंग की गुंजाइश नहीं होती थी। अगर आखिरी सेकंड पर भी एक वायलिन गलत बजा तो पूरा गाना शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था। जब इतने सारे ओरिजिनल वाद्य एक साथ गूंजते थे, इंसानी रूह समा जाती। यही कारण है कि विविध भारती पर बजने वाले ये सदाबहार गाने आज भी सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। एक साथी की ये बात है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है, तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों में समा जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आरती फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ें। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, संगीत

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी गजल में अपना अक्स मिल जाता है, कभी किसी धुन में बचपन, और कभी कोई पुराना गीत बरसों पुरानी याद को फिर से मुस्कुरा देता है। ये बात हमारे श्रोता ने लिखती है। और एक साथी लिखते हैं कि संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के लिए माँ की लोरी और देवी देवताओं के लिए भजन और शादी विवाह जैसे अवसर पर संगीत संध्या में हम गीत संगीत के माध्यम से इन अवसर को और भी रंगीन बनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत कला का विशुद्धतय रूप है, इसलिए वह सौंदर्य को सबसे उच्चतम रूप में प्रकट करता है। सावन के भीगे दिन हो या गर्मी की जलती दोपहर, एक संगीत ही है जो दिल को नरम नरम एहसास करा के जीवन में रस घोल देता है। जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है, जिंदगी संगीत में अपना सुकून खोज लेती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी गीत सुनना सबसे सुखद और सबसे मनोरम लगता है। सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराना सुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे, जब तक ये पूरी कायनात सुरीली बनी रहेगी। धन्यवाद आपका। चलिए, चित्रलेखा फिल्म का गाना लता जी की आवाज, सही लुधियानवी के बोल, रोशन का।

0: कहना, ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो उलझा हुआ मन भी सुलझ जाता है अनायासी, इसका हमें आभास भी नहीं होता और ऐसा हो जाता है। एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे पुराने गाने इतने मधुर लगते हैं और संगीत इतना मीठा कि पूछो मत, मैं ऐसी खो जाती हूँ कि आगे पीछे की मुझे कोई खबर ही नहीं रहती। हाँ, संगीत के प्रति दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त परिवार साथ रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया, मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, वहीं रुककर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: की आवाजें हैं इसमें और संगीत आपको पता ही है, रोशन का। राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना है। लिखा किसने है ये आप हमें बताइए।

बावरे नैन फिल्म का ये गीत आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। एक साथी ने लिखा है कि मंजू जी, घर में तो प्रायः ऐसा होता ही रहता है कि कभी किसी बात पर किसी से बहस छिड़ गई या छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई यूं ही किसी छोटी सी बात पर हो जाता है, तो फिर उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में जाकर शांति से बैठकर गीत सुनने लगते हैं। रेडियो पर विविध भारती तो नित्य प्रतिदिन बजता ही रहता है, चाहे वो बजने वाला गीत कैसे भी मूड का हो, पर अपने बिगड़े हुए मूड को बदल ही देता। यही तो होता है संगीत का जादू। एक साथी की ये बात है कि संगीत मन की दवा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को संतुलित करने और मन को शांति देने का माध्यम भी है। जब मन उदास होता है, जब मधुर संगीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तनाव को कम कर देता है। संगीत भाषा और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदय से संवाद करता है। भजन, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, हर स्वर में मन को सुकून देने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा और मन की सबसे प्रभावी दवा कहा जाता है। एक साथी ये बात लिखते हैं कि मानव ने रचाया संगीत तो ठीक है, पर कभी सोचा है कुदरत के संगीत के बारे में? भंवरों के पंख का गुंजन, हवा से लहराते पत्तों का गुंजन, अरे सागर की गहरों का संगीत, लहरों का संगीत, वो भी तो याद कीजिए। एक साथी की ये बात कि कई बार संगीत मन को असीम सुकून दे जाता है। मेरे पापा जो आज डिमेंशिया से ग्रस्त है, उन्हें पुराने हिंदी गीत बेहद पसंद है। जब भी वे रेडियो या टीवी पर ये गीत सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है। उनका सबसे पसंदीदा गाना है जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए। ये बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी ने यह बात लिखी कि मंजू जी, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही विविध भारती पर संगीत सुनते हुए गुजार दिया है। कॉलेज के समय रेडियो पर और नौकरी में कंप्यूटर और रिटायरमेंट के बाद भी वापस जीवन की एक ऐसी धारा है जिसको मैं छोड़कर नहीं रह सकता। एक साथी ने यह बात लिखी है कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्वर्गीय माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर पर थी। मैं उनके पास बैठा रहता था जब विविध भारती को सुना करते थे। उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वह सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाजें हैं इसमें। रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में एक बड़ा सा रेडियो लगता था। उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चला करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत जरूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने यह बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर चुका था। सगाई और शादी से पहले की बात है। मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं। कंफ्यूज था, उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट ला के दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी, और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनाते हैं, आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोकगीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। दोनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी के हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जब किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार घुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हों तो वो संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं न कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना नौबहार इस फिल्म से लता जी की आवाज।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: का एहसास।
1: संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है। रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं। हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज।

एक साथी ने बात लिखी है कि ये बताना चाहूंगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोजाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना मन्ना डे।

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज है। सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख कर भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

0: दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन, और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।
1: ओए

0: धार धरे ओ धरती चलते मांग भरे ओ मड़ को मड़ कर आई रे पता।
1: हालांकि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है, शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है, इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाके से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है, और तब शहर हो या गांव, पानी की समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए, कहा अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से, और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति
0: डोनाल्ड ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरु मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को कूटनीति की ओर आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमरीका

0: अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फघरी ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। इस श्रृंखला में खरीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
4: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
5: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नवजौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @यायार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के फ्रांस और स्पेन के बीच जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजिंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अब आप सुन सकते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन का संगीत।

जतन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में के नाम पर है। स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पद्धति।
1: कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां काट देना रास्ता।
0: उजाली उनकी यादों की 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विद भारती पर
5: सुनिए।
6: ये है नौनिहाल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सहेली सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। कैसी हो चंचल?
1: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं, उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
0: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें यही हो गया है कि हमें इंतजार रहता है साथियों का, अपने मित्रों मैसेजेस का, और हम इंतजार रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
0: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
1: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की

0: सुध भी नहीं लेते, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
1: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
0: हाँ।
1: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं,
0: हाँ।
1: हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार लेके अगर हम इतरा रहे हैं और घर के जब चार से बैठे पता लगा चारों लोग नहीं मोबाइल में किसी न किसी से संपर्क
1: में लगे
0: और आप ही संपर्क नहीं है, जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल बैठा हो,
1: वो हमारे अपने, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: उपासना टाकू के बारे में
2: और एक जहाँ हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और ये क्यों इंतजार होता है।
1: और छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, कोई लोकोक्ति मुहावरा,
2: मुंह में राम बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि मुहावरा। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें।

खुदा मेरी।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है, ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है, लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: सही कहा आपने, और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं, और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती जो दुनिया है इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें, अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया,
1: घंटों लंबी लाइन में
0: लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अभी काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं, और यहाँ तक सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशगूल रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारी जो नजरें हैं या हमारे काम हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त मोबाइल के पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
0: मोबाइल इतना है ना, ऐसा लगता है
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे, ऐसा लगने लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
1: बिल्कुल,
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कॉन्टेक्ट, जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही है। यही कमरे में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सब नजरें अपने मोबाइल को मैसेज कर, मोबाइल ने हम सबको ऐसा कर लिया है उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं, नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन हम वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं
0: और हमारा पूरा ध्यान चलो पढ़ाई करो बहुत हो गया, हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
0: चलिए

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर है, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बहादुर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा गया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना चाहिए पान वाले वगैरह। तो फिर कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे।
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: स्थान सही पर अंशपे की उजाले उनकी यादों के 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विद भारती पर।
5: सुनिए
6: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ, हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
7: हाँ, लेकिन चंचल हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। दोनों सखियों का संगम हो रहा है जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है, इसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
6: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव की है, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
7: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं। हाँ। जो उन्होंने एक काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
6: और अब बात करते हैं कि डिजिटल, हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर क्या करते थे, जे वो वेश तेवी वार्ता। हाँ। यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लेकर बताया है, इसका मतलब है वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी है, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख

0: है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल हुए रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहाँ ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहां। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बना या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर टिकी होती है।
0: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है
1: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न केवल औपचारिक या आभासी छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
0: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना पूरी तरह से सही भी नहीं है, इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने कामों से फ्री होकर सब निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे, और डिनर के समय तो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय मोबाइल साथ लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल आपने सही, इतने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा, हम बैठ कर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही, ध्यान होता था वाला है, लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
0: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की सह संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं।

0: डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे ऐप्स उपयोगकर्ताओं के खर्च को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज ऐप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, इनकी दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल। और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ कर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति बिपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: मैं कह लीजिए अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में, और हम बात कर
1: बिल्कुल।
0: रहे थे उपासना ठाकुर के बारे में। हमने बता दी कि के व्यवसाय की शुरुआत हुई करती थी, अपना जो वो कारोबार को शुरू करना चाहती थी इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी है।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुत जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अमेरिका में रहा करते थे और पिता एक और माँ एक।
0: उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में, प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी, और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना
1: कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और इसकी तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: देखिए ना संघर्ष कितना किया उन्होंने, 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते, आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुनेंगे।

सजना।

0: तो चंचल बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया, और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में। उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं, कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं, और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती
0: बिल्कुल
1: है।
0: इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना
1: और
0: चाहिए
1: हमारे भी
0: को।
1: बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे
0: सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये। और

0: निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इससे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले एक कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यह है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं। लेकिन हाँ, अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा, आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका ध्यान भी हमें करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे देश में कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: वो सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वो लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ हैं कि नहीं, बनाने के तरीके साफ हैं कि नहीं, ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं। ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से दिखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है
0: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे शोधा लिखी सेहत केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं, को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधताएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, बेचन शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, बाजरा चुने और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बहुत ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
1: एक और बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल
0: तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीव है ना, पसंद करती है बाहर की उबली चाय जिस कितनी उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितना आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में ताजी और घर के बने भोजन को प्राथमिकता

0: देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में। खाने को कम टेस्ट नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज की रोटी बना दे और सैंडविच वगैरह बना ले, इस तरह से पिज्जा रोटी भी बनती है, घर की जो चीजें हैं स्वादिष्ट होती है। तो ये पिज्जा बर्गर ये चीजें हम घर में,
0: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
1: और बच्चे चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियां बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं। और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना, वहां बिल्कुल जो कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती है, सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अभी आप पढ़ रहे थे संदेश, वो यही कहना चाह रहे थे कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाए और घर में आप आराम से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना गा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है मुंह में राम और बगल
1: दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे श्रोता लिखते भी है कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है, ऊपरी तौर पर मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना। ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आजकल सोशल मीडिया और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाश करते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: इसका अर्थ तो सभी जानते हैं कि आपसे ऊपर से मीठी मीठी बात करता है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कई लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात की गई है कि कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, छोटी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है। सिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं। मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हैं नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में भरा।
1: क्या बात है, और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना, हम कॉपी
1: उदाहरण देकर समझाइए,
0: उदाहरण देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अभी गीत सुन लिया है और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे श्रोता है वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, यानी कि बिल्कुल
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ, बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कर जोशी और
0: इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो अभिनय की दुनिया कर रहे हैं। इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हैंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा,
2: और उनके साथ इनके एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। कि मैट्रिक्स नाम की बहुत खूबसूरत फिल्म थी डायम की, वो उसके डीओपी रह चुके रिचर्ड, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने किए
1: जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था, उस दौरान 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार कैसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू कैरेक्टर क्या है। मैं ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया, जो कि राजवर्धन साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 2011 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा,
2: विश्वास नारायण सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, नला ठीक है। नागपुर में जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया प्रोडक्शन, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक इट, कमर्शियल की जो बातें थी वो हुई। एंड आई जॉइंड द थिंग, मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
2: आके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, वहां जाके मुझे पता चला कि ये 2611 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी, और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर है तो आई एम क्रेजी अबाउट, बड़ा ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा।
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करना।
2: हाँ, उनका एक अलग तरीका है।
1: तो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
2: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा,

0: जैसे मैं दो के दौरान अगर उनके साथ शूट करा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी है, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
0: काफी अच्छी बात थी उनके साथ भी, तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस, हमें कम इम्पोर्टेंस, उनके लिए सब तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले,
1: अच्छा,
0: एंड वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार, लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है।
1: अच्छा, हाँ, एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते हैं आपके रोल के बारे में, हाँ, क्या बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है
1: जी, तो जी,
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, और हालांकि वो मुझे पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्म की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है,
1: हाँ,
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस पता
1: जी,
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है,
1: अच्छा,
0: कि एवरीथिंग इज अ टेक, वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी,
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक, एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूँ,
1: अच्छा,
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा सर ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक,
1: अच्छा,
0: जो मुझे यहाँ पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूँ, तो मैं एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, वो लेकिन नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे, मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना, नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे, लाइक ठीक है छोड़ यार, मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए, मैंने बोला सर एक पॉइंट है, बोले हाँ बोलो, मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है, उन्होंने बोल के देखा, सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है
1: जी जी,
0: इज अ कैप्टन ऑफ द शिप,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, बड़ी बोला हाँ गुड गुड डू इट,
1: यस,
0: ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए, आर्टिस्ट प्रॉपर नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे, आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है,
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है
1: जी जी,
0: तो अच्छा मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं उसको ज्यादा
1: और तो बहुत जरूरी
0: है, बहुत जरूरी
1: है,
0: सेम थिंग राजकुमार जी भी वही हुआ
1: जी,
0: हम लोग गांधी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलते हैं कि महात्मा ये जो आपके प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी,
1: अच्छा,
0: डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो वो बार बार इंसिस्ट करते हैं कि महात्मा जी आप सुनिए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं किसी की चेकिंग नहीं होगी, और वो जाने को बोलते हैं,
1: अच्छा,
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं, और ये फिर से उसको मुझे लगा कि इसमें बहू बोलना चाहिए, थोड़ा सा इमोशनल
1: रहे वो महात्मा बोल
0: रहे, अरे करना यार, तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा, फिर से मैंने स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो, हाँ, थोड़ी मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है, ठीक
1: हाँ,
0: है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, तो फिक्शन है, और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल हो गए उनको बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बापू पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट, उसने नहीं बोल दिया, मैंने राजजी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ चलो चलो, मैंने बोला राजजी ये, हाँ बोलो, ऐसा ऐसा बापू बोलो, मैं बोला ये ऐसा ऐसा, फिर मैं ये ऐसा, हाँ बहुत बढ़िया, मेरा यही कहना हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है आप दे सकते हैं, भी मैं जैसे वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू, वो पूछते कि आप

0: करोगे, कैसे करोगे? तो विश्वास वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था,
1: अच्छा
0: तो विक्रम मराठी में काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम है
0: बड़ा नाम है, शोज
1: जी।
0: करता है। मैं साथ में फोर इडियट साथ में पहली फिल्म थी,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: उसने कंटिन्यू किया। उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर, और वापस आया तो 4 साल मैंने मेरा सफर से चालू किया।
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते शायद जहां वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर उतने व्यूअर्स नहीं मिले,
1: हाँ
0: बट आज मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए। आपको 4.5 घंटे का होगा, बहुत ही छोटे छोटे डिटेल उसमें दिए गए हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट जो कि निक नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा,
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही सर्ग प्रेमी इंसान हूँ। हाल ही में गोवा गया तो मैं वहां पे घंटे बीच पे बैठा करता अकेले, गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता। और उस वक्त वो मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं।

0: मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा है हिंदी में थिएटर करते हुए?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी है, मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ हिंदी का हुआ
0: जी,
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ सुनील उपाध्याय
0: जी,
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया रंजीत सर, एक अपने आप में मैंने कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय दोस्त हुआ करते जिन्होंने मुझे बताया।
0: अच्छा,
1: आंतोन रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल
1: 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में, तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के, हम लोग सर्कल बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक देखा रंजीत सर के रीडिंग में डेढ़ पेज के ऊपर ही नहीं होता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा,
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स, अगर कोई चीज एक शब्द बोला है उसमें कुछ शब्द अक्षर है, एक छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं प्रेशर देके बात करनी है, वो आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे, अगर उनको दिखता है आपकी एबिलिटी है तो ही वो एक लिमिट के बाद शायद छोड़ते हैं कि नहीं किसी दूसरे को दिया
0: है।
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा, तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: तो ज्यादा जोर दिया,
1: ज्यादा जोर दिया जाता है तो तभी वो ज्यादा हो जाता है
0: जी,
1: जो
0: जी,
1: मैं उनसे
0: जी।
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है
0: जी, जी।
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है वो सीखने को मिलता है, जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत
0: जो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूँ, दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल,
1: जो कि टेलीविजन में फिल्म्स में पॉसिबल नहीं।
0: बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आता था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अब तो करते हैं मगर जो मजा नाटक या रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं
1: नहीं आएगा। सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ,
1: लाइव परफॉर्मेंस वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प दे,
0: रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त तुरंत आना,
1: यू फील सो गुड,
0: हाँ,
1: कि जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया
0: जी,
1: कहीं बहुत ज्यादा आया
0: जी,
1: तो ये चीज जो है जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत फर्क पड़ता है,
0: हाँ।
1: और मैं डेफिनेटली, और आप 15 दिन महीना भर डायलॉग्स हैं या फिर आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में
0: जी,
1: प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका भी है जो आपको डिलीवर करने को मिलता है वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उस कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता,
0: बिल्कुल,
1: तो दैट मेक्स सेंस, और जो एक बार हो गया तो फिर
0: जी। अपनी बात में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और राजकुमार संतोषी जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा, तो मैं ये कह रहा था लेखक बनने की कोई राह कभी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
1: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान,
0: हाँ,
1: मैं जब नागपुर में था
0: जी,
1: और वहां पर थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो हम दोस्त थे, हम एक एडवेंचर विलेज है, खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते
0: जी,
1: तो मैं रिक्वेस्ट करके चला गया, वहां पे खाली

0: इसमें नेचर के साथ बेटर रहता था एक कॉपी और पेन के। और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित लिखने की इच्छा हुई और मैं वहां पर लिखी पांच छह दिन वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन बाद।
1: अच्छा
0: फिर मैं वापस आया तो वहां पर मैं कहानी था मैं दोस्त वो भी नागपुर उसके साथ मैं डेवलप की कहानी।
1: अच्छा
0: और एक लाइफ इंसिडेंट जो कैसे प्रेरित करता है थोड़ा सा
1: अच्छा
0: और लाइट कॉपी
1: ये कहानी मंच पर आती है पर्दे पर
0: हम चाहते हैं ना हमारी बातचीत काफी लोगों के साथ
1: जी
0: लेकिन शायद एक इन्फ्लुएंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
1: जी, जी।
0: जो शायद उस पर समय लगे बट वी वुड लाइक टू दैट वो प्रोजेक्ट एक जरूर है आईपीसी 3 हमने टैकल दिया 24 वो जरूर बगल में पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी
0: कि यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर वो मैंने एक दोस्त के साथ फिल्म बनाई 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है
1: जी जी
0: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह क्या बात है
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए सूफी सॉन्ग है
1: जी
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग जैसे सारे गाना म्यूजिक टाइप के तो वहाँ दोस्त है लिखा हुआ था कंपोज भी उसने किया
1: जी, जी।
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट किया।
1: हालांकि इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।
0: बिल्कुल सर थैंक यू इसका नाम है शीर्षक है पिया की दासी
1: जी आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी मिसेस सीरियल किलर
1: जी,
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया।
0: अच्छा,
1: मिसेस सीरियल किलर जिसमें मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी

0: इंचार्ज की भूमिका दी गई।
1: अच्छा,
0: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
1: जी,
0: जब
1: जी.
0: तक, जैसे मैंने एक साथी में अभी इसकी बात निकली छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब।
1: अच्छा
0: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
1: जी,
0: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब। मैंने बोला कि नहीं करता हूं। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार वो डायरेक्टर साहब ने बोला कि आपसे ही आए,
1: अच्छा
0: उनको अच्छा लगा, और उनको थोड़ी टॉवरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला अजय देवगन साहब को के सामने कौन टॉवरिंग दिखेगा? नहीं नहीं, आप हाइट के से आप वो। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सोची वैसे मैं घर पे बैठने वाला हूँ, तो मेरे पास काम था नहीं, तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं उससे बेटर मैं वहां पे ऑडिशन दे दूं, मतलब मैं परफॉर्म लोग कहीं ना कहीं देखेंगे। थिंग्स हैपन दैट ओनली आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क। हालांकि बातचीत होती है मेरी, बट शायद उनके कोई ऐसा करेक्टर आए इन फ्यूचर तो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा। सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी।
1: जी जी जी,
0: तो वो एक करेक्टर, उसमें भी छोटा आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन बहुत कम थे।
1: अच्छा,
0: काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
1: जी जी,
0: उनकी वो और उनकी पूरी टीम वो देखने लायक, वो समझने लायक, सीखने लायक, तो वो बड़ा अच्छा लगा। बरस प्रोजेक्ट मेरे पास आया बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता बुर्जी के प्रोडक्शन में।
1: क्या बात।
0: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू हीरोइन हु इज इन 20s,
1: अच्छा,
0: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुको। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर डॉटर होगी आपकी।
1: अच्छा,
0: और अभी जैसे मेरा भी 15 साल का, जो रहेगी आपकी कोई 12 साल की, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसे दिखाएंगे।
1: अच्छा,
0: और कैरेक्टर अच्छा था, जब मैं कैरेक्टर स्क्रीन प्ले पढ़ा, उसके बारे में ब्रीफ क्या है, कैरेक्टर अच्छा था, और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को
1: जी,
0: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन दे सकते हो।
1: अच्छा,
0: इसलिए मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत अहमियत देता हूँ।
1: हाँ,
0: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, दे सकता है गुड़ी कैस्टे विलन, तो
1: कई शेड्स
0: हो सकते हैं
1: जी।
0: सो पॉजिटिव में शायद ही आते हैं, तो मुझे कैरेक्टर्स करने में मजा आता है।
1: अच्छा,
0: तो मैंने किए भी है कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोडेड नाम की रील की थी जिसमें वो लोग
1: जी
0: उन गलत बीज देते हैं, और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन
1: ओ
0: इस टाइप का एक, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। ये सब चीजें बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि टीवी कैरेक्टर था
1: जी,
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
1: अच्छा।
0: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल सोच एक स्टेप जो है अपने आप में बालाजी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का
1: जी,
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स, और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल।
1: अच्छा,
0: वो एक अपने में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही।
1: जी जी, जी। क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा नहीं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मली भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो, लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा, प्रदेश का गाना था।
1: हाँ हाँ, मकरंद देशपांडे
0: मकरंद जी थे उसमें,
1: हाँ, वो फिल्म आया,
0: शाहरुख भाई भी उसमें
1: हाँ,
0: साथ में किया, और बहुत ही खूबसूरत है कि उनकी कैरेक्टर में वो चले जा रहे हैं
1: जी,
0: ये गाना है, और अभी बारिश आने ही वाली,
1: हाँ

0: जून में आज तो आई एम श्योर वीक्स टाइम वी विल गेट मौसम में या बुलेट मतलब जो भी है पॉसिबल आपको और वो लेके आप चलो हाँ। और फिर ये गाना सुनो तो आप स्वदेश में पहुंच जाते हो
1: क्या बात चलिए सुनते हैं यही गीत
0: जी।

ऐसा छाया, दिल ये हाल नहीं आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको, अच्छा लग

0: विपुल जी, ये जो लंबा क्षेत्र में के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता एक बार मन में सोचता है कि काश मैं इसका डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी होगा, तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आप भविष्य में क्या कुछ?
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा
0: जी।
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेज शूट की एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटरी फिल्म ऑडियो विजुअल्स मैं एक साइड बनाता हूँ, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ साथ हम हमारे फिल्म्स को भी फंड कर पाए।
0: अच्छा,
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया IPC 24, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी जो तो भी स्टोरी बहुत पसंद है
0: जी,
1: बट हालांकि वही फाइनेंस चलते वो फिलहाल तो बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी बर्नर पे आके मुझसे

0: मेजर आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर
1: जी
0: मैंने वागले के बाद में अभी अगले की दुनिया के बाद में लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया
1: जी
0: आई एम वेटिंग फॉर इट जो लेवल पे ने डिलीवर किया था उसी लेवल पे किरदार
1: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बच्चों कहानी पढ़ते हैं देखते हैं सुनते हैं और ऐसा कैरेक्टर होता है कोई रोल होता है तो वो कौन सा कैरेक्टर है कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं अब तक मौका नहीं मिला
0: ये अब आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है बिकॉज दायरे ओटीटी अपने आप में इतना बड़ा है इतने सारे चैनल आए हैं तो बहुत अलग है अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
1: जी
0: मैं आजाद हूँ वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था
1: अच्छा
0: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से और बड़ा ही फकीर टाइप का है और वो उस शहर को बदलने उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे जाता है
1: ओहो, क्या बात
0: तो वो एक बड़ा खूबसूरत और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था इतने बाजू इतने सर गिन ले ध्यान से हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से
1: वाह
0: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था और फिल्म भी उतनी खूबसूरत तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार वो करने को मिले तो मजा आया
1: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आया है
0: एक ख्याल से जो गाना ये गाना ही बहुत होगा हम जब जी जान से खेलते जी जान से लड़ते दुश्मन दुश्मन सामने लेकिन हम जी जान से चीज करते हैं पैशनेटली कुछ चीज करते हैं तो आपको मजा आता है वो चीज होती है

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत
1: हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं वो भी, दुर्भावनाएं जो होती
1: हैं
0: वो भी हमारी दुश्मन है।
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी
0: जी।
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और लिव लाइफ हैप्पी, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट।
0: क्या बात है, का जो ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहां बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से काम करना चाहिए बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है, किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है, क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है और उसे बहुत खूबसूरत उसे शो या प्ले कहा जाता है, प्रयोग, हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें
0: जी जी,
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो, तो मेरे ख्याल मंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा। और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है
0: जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो इसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग प्वाइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए, तो विपुल आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ,
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि जो नहीं जो मुझे वो दे पाते NSDFTI, उसके बाद जब मैंने इस फील्ड में काम करना है तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं
0: जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टेन होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी। और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे, उनको देख के उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से काटी में मैच कर लेता हूँ
0: जी जी।
1: बाकी सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एक जैसा सफर रहा है
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है, वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन मतलब
0: जी
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत, मैंने बोला
0: जी जी
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पे बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है तो एक मिल्खा सिंह जो थे जी,
0: हाँ,
1: जिंदा है
0: हाँ,
1: ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता है।
0: क्या बात है
1: जी,
0: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में, और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा आएगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए। कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि हमसे पहले भी मुसाफिर गुजरे होंगे यहाँ से, कम से कम राह के पत्थर तो आते। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, हाँ, उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा स्टार्टअप मैंने शुरू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 मेल 3 फीमेल, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल, उसमें यतिन कारेकर जी, सुनीका शेखर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी
0: जी,
1: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत दोस्त
0: हैं जी जी,
1: ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये कंटिन्यू कर प्रोजेक्ट्स, बट मैं अभी भी चाहता हूँ ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक

0: फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए और जो लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जिनका समय है जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो हमारे साथ समय बिताए, एक्सचेंज ऑफ थॉट हो तो उसके बारे में पता चलता रहे।
1: क्या बात,
0: तो ये मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ कर थोड़ा सा डर ही है कि कौन था कि लोग हर मोड़ पे रोक के संभलते क्यों हैं?
1: अच्छा,
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं?
1: ओह क्या बात,
0: दिस इज वन थिंग। ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि जी, मैं कंटिन्यू करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया strugglesmart.com की आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो।
1: अच्छा,
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था जब मैंने कहा था कि लोग कांटेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम्स से अलाइन कर सकते थे। जैसा कि 3 साल मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल जो हमारे साथ एक्टिव करना चाहता हूं, और तब तक अगर तो डेफिनेटली कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और उनकी ओर आपको और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं
0: भी शायद हमारी बात
1: जी
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
1: हाँ,
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो।
1: हाँ,
0: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे। तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, कोई उस रोल का अपना महत्व नहीं है।
0: तो नहीं। बस
1: हाँ,
0: मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
1: जी,
0: उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा। शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ,
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ। पर वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि मैंने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया।
1: जी जी जी।
0: तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो,
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का टाइटल तक है तेरी कहानी, तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये सुनते हैं।

जंगल जंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता कर दिश में करते हैं तारे जंगल जंगल।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से विविध भारती के तमाम आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने वॉल ऑफ फेम आपका और लॉबी ऑफ फेम देखा, यहाँ पे कौन नहीं आया है।
0: जी जी,
1: मुझे बड़ा ही गर्व है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, अचल भदर के, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

आज तो वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ, और ये नाजनी है मेरी, हाँ समझा था मैं ये है खड़ी, लेकिन वहाँ कोई और थी, इनके लिए है मुहर्रम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम, हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

कि देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये।

0: आधा दिल मुझे जिम सही इनके लिए कदम और कसम देखिए सारे वो
1: मंजिल तय हुई, ये दो दिल कब एक हुए हमें पता चला, मगर फिर भी हमारी उल्फत का चर्चा हर जुबान है।

आजकल तेरे मेरे प्यार चले हर जमान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार

आज करते तेरे प्यार करके हर स्थान पर।

देख लो, सोच लो, अब तो संभलना होगा। मिलना है कल तो आज की रात चलना होगा।

आसान है जाना महफिल से, जाओगे निकल कर।

ये विभाती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस ही।

कार्यकर्ता नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने नमस्कार, आप सभी का स्वागत, शुभ संध्या साथियों का आप संगीत है।

Yeah.

Yeah, I did.

दिल में तो सारी दुनिया हम सारी दुनिया।

0: लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आनंद बख्शी का लिखा गीत है शोभा जोशी और मोहम्मद अजीज की आवाज़, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है हम।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवन से करूं। अब इसको कलाकारों इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: गीत आपको सुनवाते हैं उषा मंगेशकर, आशा भोसले और महेश कुमार की आवाजों में। गुलशन बावरा ने गीत लिखा है, धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है चक्कर।

यही विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर डमरू मध्य से सुरक्षा निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उन पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट फॉर्मोस के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा के ऊर्जा सुरक्षा पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
1: जो दो जहाज जिसपे सवेरे हमला हुआ जहाज में 3 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 भोर पहुंचा है उनको, उसमें से 2 गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई जाने हमारे लोग गई है। मैं कह सकता हूँ कि जितने भी देश दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिप जो भी हुआ है वो सबसे ज्यादा नागरिकों की हमारे देश के लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जल डमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीन स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। वहीं स्पेन 2008 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तो एक बार फिर ताने नए पुराने कार्यक्रम के विशेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आशा भोसले, आरती मुखर्जी, अमित कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम है परवरिश।
3: अजी।

0: अभी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं।
1: कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, पकड़ लिया। और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: जल्दी बुलबुल कोई और कर देता लग गिया तेरे पीछे क्या।
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सही पर आने की उजाले उनकी यादों के 19 जुलाई से अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।
5: आइए अब सुना जाए अगला नगमा, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सईद, फरीद साबरी, सतीश और साथियों की आवाजों में। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है हिना।

0: हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल खास।
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज यही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती हर पल है आपके।
4: आसमान चांद सितारों से फूट काटता है, रात होले होले धरती पर अपना आ...

0: है। अब विभाती बन जाती है एकाकीपन के साथ ही।
1: एक तेरा साथ जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ मोल में।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।

Cô sơn vật gầy Lakshmi.

राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के विशेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन और 6:45 का कार्यक्रम सुनिए सरिता। शाम 7 कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज है पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 पहल में आज आपको सुनाएंगे प्रहसन बाज आए ऐसे। 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है महान संगीतकार रोशन पर। रात 10 छायागीत में आज सुनिए ममता सिंह को। कल सुबह पर श्री रामचरित मानस गान का 250 सुनिएगा। संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सायंकालीन संदीप का शिराग इस श्रृंखला गायिका विदुषी आरती अंकलीकर को प्रस्तुत करता है रूपाली रूपक। इस कार्यक्रम को दोबारा सुना जा सकता है शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनवाएंगे सुबह 7 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार की। त्रिवेणी 8 इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2 प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम विज्ञापन सेवा के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मन भवन।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो.
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ. एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी. पेमेंट लिंक भी भेजा है.
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है. धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं.
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो. सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें.
2: समझ गया.

0: ठीक है?
1: हमारे प्यार की निशानी।
0: तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो।
1: हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। We both love each other।
0: देखो दिशा, दोस्ती से बढ़के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। दिशा, दिशा प्लीज। I'm sorry।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भवन। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनाते हैं, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। इस फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए।

और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता बंधु। आप हैं टावर चौक गुमला से सिम जावेद, शगुप्ता अंजुम और उनके साथी, सीसीएल बरकाकाना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, रिया उर्वशी, बेबी सोना और बाबू आरके वर्मा। चेपाकला से बड़कागांव से आप हैं बाबूलाल ठाकुर, साविया ठाकुर, तिलेश्वरी ठाकुर, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर और विकास कुमार ठाकुर। किशोरगंज चौक से मोहन कुमार पाठक, बिरनी गिरिडीह से समीर कुमार वर्मा और उनके बहुत सारे साथी, बरकाकाना से इफ्जाल ताज, शाहीन सुल्ताना और मोहम्मद अफजाल मलिक। आप हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और विक्रांत मोदी। चांदनी चौक बनापीर से नाजीम अंसारी, मोजीम अंसारी और मुजाहिद अंसारी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनना चाहते हैं मेहर नगर उमर खेड़ से अभिजीत गौहाणकर राही सरिता गौहाणकर और परिवार के सभी सदस्य। आप हैं दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय और रोशनी रॉय और आप हैं हिनू रांची से प्रवीण कुमार और उनके परिवार के सभी सदस्य।

और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म वीर का गीत। सुनना चाहते हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर और मिथिलेश ठाकुर, भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा, सुंदरखेड़ राजमाता नगर से आप हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े और परिवार के सभी सदस्य, गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, गौरी शंकर केशरी, शंभू केशरी, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और फिरोज आलम, सीसीएल बरकाकाना से आप हैं अमन वर्मा, रविंद्र वर्मा, रिया उर्वशी, बेबी सोना और बाबू आरके वर्मा, बरकाकाना से आप हैं इफ्जाल ताज, शाहीन सुल्ताना और मोहम्मद अफजाल मलिक।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत हरिहरन और साथियों की आवाज में, गीतकार हैं पीके मिश्रा, संगीतकार हैं एआर रहमान, फिल्म का नाम है रोजा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
2: दम्भ का स्तंभ खंधम धम त्रिशूल गाड़ के

की ये सेना, रक्त में जो आग है ये तांडवों की जाग है, सब काल गुणा भाग है, विराग अनुराग है। भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मार्ग क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: चिल्ला चढ़े चढ़े सब जब निकल पड़े घटना स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है।

0: वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अनपढ़ इस फिल्म का में नवाजा मेहंदी अली खान, संगीतकार है मदन मोहन।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशन

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कहा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललनिया, आप काट दिया रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की,

0: 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 6 बजे सिर्फ विविध भारती पर
1: सुनिए।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है मेरा साया।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है मदन मोहन, फिल्म का नाम है चराग।

एक सुरीली यात्रा है ये जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: साथियों जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना है मदन मोहन की और फिल्म का नाम है नींद हमारी खाब तुम्हारी।

0: अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, नगमा दिगार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है मदन मोहन और फिल्म का नाम है लैला मजनू।
1: अब अगर हमसे

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है रोशन का, फिल्म का नाम है मल्हार।

गया दिल मेरा कहो ढूंढ।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत। तो पहला गीत यूफोरिया एल्बम से पलाश सेन की आवाज में सुनिए।

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पॉप एक्सप्रेस में अगला पॉप गीत है राहुल जैन और जुबिन नौटियाल की आवाजों में। गीत संगीत है राहुल जैन का।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में एल्बम दिल को मैंने दी कसम, इस एल्बम से गीत को लिखा था कुमार ने और संगीत था अमाल मलिक का। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में आपने सुने कुछ पॉप गीत।

बाज आए ऐसे फैशन से। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको नाजनीन का लिखा ये प्रहसन सुनवा रहे हैं। इसके निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: Sharing box, ah, ये रहा जिंदगी की। अरे रेजर तो इसमें है ही नहीं, फिर दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? रेहाना, अरे ओ भाई रेहाना, ओफो न जाने इस घर को क्या होता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ रेजर गायब था और अब बेगम भी गुम हो गई।
1: तौबा है, अच्छी खासी मैं घर में हूँ, फिर भी यूँ चीख रहे हैं जैसे कि मैं लंदन में हूँ। क्या बात है, क्यों सदा लगाई थी?
0: इसमें वो रेजर नहीं है।
1: उसे तो मैंने फेंक दिया।
0: फेंक दिया? लेकिन क्यों?
1: वो भी कोई रेजर था, बिल्कुल पुराने फैशन का।
0: क्या मतलब?
1: अजीब, वैसा रेजर तो बाबा आदम के जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे।
0: ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई मैं कल ही तो खरीद कर लाया था और वहाँ तुमने फेंक दिया।
1: जनाब, आज का जमाना तरक्की का है, दुनिया की हर शय बदल रही है।
0: जी
1: जी हाँ, लोग पुराने को छोड़कर नए को अपना रहे हैं, लेकिन एक आप है कि वही कदर के वक्त के फैशन से चिपके हुए हैं।
0: तकरीर तो काबिले तारीफ है आपकी, लेकिन ये बताइए मेरी दाढ़ी का अब क्या होगा?
1: वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो, बिल्कुल नए किस्म का शानदार रेजर। मेरे भाईजान इसी तरह का रेजर इस्तेमाल करते हैं, तुम भी करो ना, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ।
0: नए किस्म का मेरे भाईजान इस्तेमाल करते हैं। चल भाई राशिद, अब इसी से दाढ़ी खुरच डाल, वरना कहीं बेगम साहिबा ने इसे भी पुराने फैशन का करार दे दिया तो फिर बिना दाढ़ी बनाए ही ऑफिस जाना पड़ेगा। चाय तैयार हो गई हो तो ले आओ।
1: कहो कैसा था रेजर, शेप ठीक से बनी कि नहीं?
0: हाँ ठीक बनी। अरे कमबख्त ने गाल को जगह जगह से काट कर पानीपत का मैदान बना दिया। ये देखो
1: नया था ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर देखने से कमाल। कल नया स्टील का सेट खरीदा है, अच्छा है ना?
0: लेकिन
1: बिल्कुल ऐसा ही मैंने फूफी जान के घर में देखा था, बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने भी ले लिया।
0: लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, वो चीनी मिट्टी वाला सेट तो अभी ठीक ठाक था।
1: अच्छा छोड़िए भी, वो जमाने गए जब लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते पीते थे।
0: अब तुमसे तो वो बहस करे जिसके पास फालतू दिमाग हो।
1: इसमें बहस कैसी, वो मिट्टी के कप निगोड़े हुड़क चिल्लू जैसे मुझे एक आंख भी ना भाते थे। जुमे को खाला जाना ही थी, मैंने उन्हें उसी कप में चाय दी तो वो हंसकर बोली, क्यों रेहाना ये टी सेट क्या मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में निकला था? उफ क्या बताएं, मारी शर्म की मैं तो पानी पानी हो गई।
0: और इसीलिए तुमने उन्हें फौरन नादान में फेंक दिया।
1: तो और क्या करती, एक बार तो ना कट गई, अब क्या दूसरे मेहमानों के आगे भी अपनी बच्ची खुची नाक कटवाऊं?
0: जी नहीं, कतई नहीं, मैं कुतुब मीनार की तरह अपनी नाक ऊंची रखी है, भले मैं कंगाल हो जाऊं।
1: तुम तो नाक परेशान हो रहे हो, ये सेट मैंने पैसों से थोड़े ही खरीदा है।
0: तो फिर क्या आसमान से टपका है या आपकी वो खाला जान खरीद के दे गई है?
1: हटो भी, अल्लाह न करे हम लोग किसी के भरोसे जिंदगी गुजारे। ये सेट तो मैंने अपनी चार पुरानी फैशन की साड़ियों और वो तुम्हारी दो पैंटे थी ना उनके बदले में लिया है।
0: क्या मतलब, जहाँ तक मुझे याद है ना तो तुम्हारे पास कोई पुराने फैशन की फालतू साड़ी थी और ना मेरे पास पैंट, फिर तुमने किन कपड़ों के बदले में ये सेट खरीद डाला?
1: तौबा तौबा, वो चारों साड़ियाँ कहीं पहनने लायक भी नहीं रह गई थी।
0: क्यों, क्या हो गया था उनमें?
1: अरे चारों साड़ियों के प्रिंट आउट ऑफ डेट हो चुके थे।
0: ओफो।
1: उस दिन पार्टी में चाचा जान की लड़की नजमा को देखा था ना?
0: हाँ, देखा था।
1: कितनी खूबसूरत डिजाइन थी उसकी साड़ी की, उसके आगे तो मेरी साड़ी ऐसे लग रही थी जैसे
0: मखमल के आगे टाट। क्यों,
1: हाय तुम कितने अच्छे हो, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
0: मेरी अच्छी बेगम, मेरी अच्छी बेगम, भाई मेरी पैंटों ने क्या कसूर किया था जो तुमने उन्हें टी सेट पर भेंट चढ़ा दिया?
1: अरे वो 24 इंच की मोती वाली पतलूने थी, अब तो कोई बेल बॉटम भी नहीं पहनता। मैं तो कब से मौके की तलाश में थी कि कब मौका आए और उन्हें कब बाहर निकलूं।
0: बहुत खूब, भाई खाला जान ने टी सेट का मजाक उड़ाया और तुम्हें मौका मिल गया पतलूनों को घर से निकाल फेंकने का। भाई बहुत अच्छे, कल आपके कोई चचीजान मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे भी पुराना कहकर घर से निकाल देना और कोई नया सोहन ले आना घर में।
1: क्या उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रहे हो, जरा सोचो इन बेकार और पुराने फैशन के कपड़ों से कम से कम एक काम की चीज तो घर में आ गई।
0: काम की चीज? वाह, जितनी कीमत की बुलबुल नहीं, उससे ज्यादा की उसकी।
1: एक तो इतनी किफायत से मैं घर चला रही हूँ, उस पर तारीफें करने के बजाय खामखा नाराज होते हैं।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने हैं किफायत शुवारी के। देखो रेहाना, तुम्हारी ये किफायत किसी दिन मेरे हाथ में कटोरा थमा देगी। हाँ
1: ओफो, खुदा जाने तुम कब समझोगे।
0: मैं सब समझता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, पैंट तो तुमने उस बर्तन बेचने वाले को पहना दी, अब मैं ऑफिस पहन कर क्या जाऊँ, तुम्हारी साड़ी या तुम्हारा पेटीकोट।
1: नहीं नहीं, अभी इसका फैशन मर्दों तक नहीं पहुँचा है। वैसे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मर्द साड़ी बांधने लगे। फिलहाल ये लो, इसे पहन कर जाओ ऑफिस।
0: ये?
1: हाँ
0: ये पहन कर जाओ।
1: हाँ पहन कर देखो, मजा आ जाएगा।
0: ये सूती पैर पर भी जाओ।
1: ये सूती नहीं है, इसे कहते हैं अमेरिकन जीन्स।
0: इसे घोड़े की जीन भी कहते हो तो अपनी बला से। मैं यह जीन नहीं पहनूंगा।
1: क्यों नहीं पहनोगे? पता है मार्केट में से कितनी शॉर्टेज चल रही है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ। मेरे भाई जान तो इसके चक्कर पड़ोसी देश तक जाते हैं।
0: और इसके चक्कर में पड़ोसी देश जाते हैं चांद पर, तो मुझे क्या, तुम उन्हीं को यह सारंगे का गुलाब पहनाना, समझी?
1: आखिर इसमें बुराई क्या है?
0: एक हो तो बताऊं, भला ये भी कोई पैंट है? चिपकी चिपकी चूड़ीदार पजामे जैसी, सिलाई तो यूं लगी है जैसे चींटियां रेंग रही हो, और तो अब जगह जगह से रंग भी उतर चुका है।
1: जवाब नहीं तुम्हारा अजी, यही तो इन पैंटों की खासियत है।
0: यानी रंग उतरना?
1: जी हाँ, इसे ही तो कहते हैं फेडेड जीन्स। जैसे जैसे इसका रंग उतरता है वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और कहीं अगर ये मोहरी के पास से फटकर झालर की तरह हो जाए तो समझो इसकी कीमत दुगनी।
0: हद खत्म हो गई पागलपन की, नया फैशन की बवाले जान।
1: बस ज्यादा सोचो नहीं, अब फटाफट तैयार हो जाओ।

0: स्मार्ट लग रहे हो, क्या फिटिंग है आज तो ऑफिस में तुम ही तुम नजर आओगे।
1: बता पहने दो, इस मार क्या खाक लग रहा हूँ। अरे सारस लग रहा हूँ सारस, उफो कमबख्त टांगों से जो कितने चिपकी हुई है, हवा तक पास होने का नाम नहीं।
0: अब ज्यादा दरकनूसी बातें मत करो, लो लंच बॉक्स लो।
1: लंच हो इस बालिश भर के डिब्बे में?
0: हाँ, आज से इसी में लंच ले जाओगे तुम।
1: क्यों, मेरा वो चार वाला बड़ा सा कटोरदान क्या हुआ?
0: कुछ तो अगर से काम लो, भला इस पैंट के साथ वो घंटाघर मार का कटोरदान मैच करेगा?
1: और लीजिए, अब साला ये फैशन खाने पीने में भी शामिल हो गया। लगता है तुम्हारा ये नया फैशन मुझे भूखा मार डालेगा। भला इस डिब्बे में कितना खाना आया होगा?
0: अच्छा खासा खाना आता है इसमें, मेरे मायके में सारे लोग इसी में खाना ले जाते हैं, और फिर दोपहर में वैसे भी खाना कम खाना चाहिए।
1: क्यों?
0: टोन निकल आती है, स्मार्टनेस खत्म हो जाती है और आदमी बेडॉल हो जाता
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा बस बस बोर मत करो, मेरे जूते कहाँ हैं?
0: ये रहे।
1: ये क्या है?
0: जूते हैं और क्या है।
1: लेकिन मुझे तो ये उगलदार नजर आ रहे हैं, मेरे वो अपने पुराने जूते क्या हुए?
0: अजी मिट्टी डालो उन पुराने मेढक रुमा जूतों पर, इन्हें पहनो, इन्हें कहते हैं लॉन्ग बूट।
1: लॉन्ग बूट?
0: जीन्स पर यही पहने जाते हैं।
1: सुन ना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई सड़क पर तारकोल फैलाने नहीं जा रहा, जिसमें मुझे इन घुटनों तक ऊंचे ऊंचे जूतों की जरूरत पड़ेगी, समझी? मेरे तो वही पुराने जूते लाओ।
0: उफ, वही पुराने पुराने की रेट, 100 दफा कहा है कि नए फैशन के लिहाज से रहा।
1: अच्छा बस बस, नया फैशन नया फैशन, ला दो जूते। साले नए फैशन की तो ऐसी की तैसी, या खुदा इस नए फैशन की बला से अरे दुश्मन को।
0: पहनोगे आदत पड़ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा।
1: आदत क्या बन जाएगी?
0: हाँ।
1: प्लीज
0: उठो।

0: आया डियर।
1: यस डार्लिंग, कम ऑन, हाँ आ जाओ। देखो ये है तुम्हारा घर।
0: हाउ स्वीट।
2: क्या कहा? किसका घर? कैसा घर? आखिरी ट्वर है कौन?
0: शट अप, मैं चुड़ैल नहीं, मेरा नाम लैला है। क्यों डियर?
2: अरे चल हट कल मुही, बढ़िया डियर और डार्लिंग वाली।
0: ओ डियर, तुम तो कहते थे मुझे यहाँ बड़ा आराम मिलेगा, मैं रानी बनकर रहूंगी। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ तो, यहाँ से चलो डियर, यहाँ मेरा दम घुटता है।
2: अरे मैं तेरी जान ले लूंगी कमीनी, शर्म नहीं आती तुझे? पराए मत को डियर कहते। ए जी, तुम बोलते क्यों नहीं? ये दिकोरी कौन है?
1: अरे भाई ये लैला है। लैला,
2: तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है?
1: मेरा ताल्लुक? मेरा ताल्लुक तो वही है जो शीरी का फरहाद से और सोनी का महमाल से था। मैं इसका मजनू हूँ।
0: क्या आ गया समझ में? इतनी देर से ऐसे डांट रही थी जैसे घर की नौकरानी न होकर मालकिन हो।
2: क्या कहा? मैं नौकरानी हूँ? चल कल मुझे, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ।
1: अरे अरे अरे क्या कर रही हो रहना, बस बहुत हो चुका। तुम उस पर हाथ उठा रही हो?
2: क्या कहा? ये तुम्हारी बीवी है?
1: जी हाँ, ये मेरी नई शरीक हयात है।
2: या खुदा, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती?
1: लो, अब इसमें होने की क्या बात है? भाई तुम तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी सभी पुरानी चीजों को अपने से अलग कर दिया है।
2: अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो?
1: ठीक कह रहा हूँ। और आपके आज का जमाना तरक्की का है, लोग बदल रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़कर नए को अपना रहे हैं। इसीलिए मैं भी नया फैशन टीवी भी ले आया।
2: जहन्नुम में जाए नया और पुराना, मैं क्या जानती थी कि नए के चक्कर में बार करो वरना मैं।
1: वरना क्या?
2: मैं जानती थी खुदकुशी कर लूंगी।
1: ओके, लेकिन खुदकुशी भी नए फैशन की होनी चाहिए।
2: ठीक है, तो तुम राज प्रकृति के साथ, मैं जा रही हूँ।
1: हाँ हाँ जाओ, शौक से जाओ।
2: क्या मतलब?
0: मतलब मैं समझाती हूँ, ये रही मेरी नकली बालों की विग और ये मैंने उतारा चश्मा।
2: लता तुम शैतान कहेंगी।
0: हाँ भाभी मैं।
2: कम्बख्त ने ऐसा रूप धरा कि मैं पहचान भी न पाई। खामखा मुझे रुला दिया।
1: खामखा नहीं रहा ना, इस पल भर की रुलाई ने तुम्हें जिंदगी भर के रोने से बचा लिया। अगर हम लोग ये नाटक करते तो तुम्हारे सिर से नए फैशन का भूत उतरना मुश्किल था।
2: चलो हटो, तुम बड़े बहू।
0: अच्छा भाभी अब चलती हूँ।
2: कहाँ चलती हो? बैठो ना, चाय लेकर आती हूँ।
1: चाय?
2: हाँ चाय। आपको कोई एतराज है?
1: एतराज बिल्कुल है।
2: अच्छा मैं भी सुनो, आखिर क्या?
1: ये कि हम लोग चाय पुराने फैशन के टी शर्ट में पियेंगे।
2: हाँ बाबा, वही पुराना टी शर्ट लाऊंगी, नहीं रखनी कोई नए फैशन की चीज घर में।

बाज आए ऐसे फैशन से। नाज़रीन का लिखा ये प्रहसन अभी आपने सुना। निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है विशाल भारद्वाज का और फिल्म का नाम है सत्या।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गीत सुदेश भोसले, सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाजों में। गीतकार संगीतकार हैं आनंद राज आनंद। फिल्म का नाम है मेजर साहब।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये सुनते हैं अगला गीत दलेर मेहंदी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन और फिल्म का नाम है अर्जुन पंडित।

0: हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं

0: समीक घटनाओं पर वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे पेड़ जंगल जी, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, इसको पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
6: एक और आ गया।
5: एक और आ गया।
7: हां जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 सिर्फ विविध भारती पर।
9: सुनिए
1: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, जसविंदर नरूला और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है सोल्जर।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक

0: अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
2: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in ऐप पर। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
3: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
4: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलाम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार हैं मदन मोहन,

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, धुन है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है संजोग।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है गायक और संगीतकार मदन मोहन की मुनफरिद आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म का नाम आप जानते हैं, दस्तक।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मन्ना डे, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा, एसडी ताबिश और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन और फिल्म का नाम है बरसात की रात।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ। कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।
1: छुपा लूं यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब ये स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

चिट्ठे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: वीको वजुदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। अनमोल होते हैं प्यार करने वालों के नगमे, सितारों से कढ़ी चूनर ओढ़कर निकली है रात की परी, तब सजी है महफिल मोहब्बत के तरानों की। सितारे करते हैं जुगलबंदी हवाओं की थाप पर, लंबी रातें छोटी हो जाती हैं इस गूंज के साथ।

अंकुरी अंकुरी खिल जाता है सूरजमुखी, धूप की पहली किरण से गुलाब की पंखड़ी पर ठहरी ओस की बूंद मुस्कुरा उठती है। नरम धूप का टुकड़ा गुलमोहर सा सुंदर लगता है जब छा जाता है नशा प्यार का। छुई मुई हो जाता है मन जब मिलता है साथ चाहने वाले का।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। नींद में देखा था एक सपना कि कोई आया है नेह की पाती लेकर, कि कोई आया है अंजुरी भर प्यार का पैगाम लेकर। फिर जागती आंखों ने सजाया।

जब गहराता है प्यार का एहसास, तो जैसे थके पांवों को मिल जाती है मंजिल, जैसे दिल की धड़कनों में बज रहा हो कोई साज, मौसम का हर मिजाज भला लगने लगता है, मन से बच जाता है जमाने के लिए इंतजार रहता है हर पल उस शख्स का जिसने लिखा है नाम मन की स्लेट पर।

कभी कभी मोहब्बत के रंग में घुल जाता है उदासी का रंग, कभी कभी ख्वाबों का रंग फीका हो जाता है, कभी कभी मिलन की घड़ियां ठहर जाती हैं, कभी कभी इंतजार सिर्फ इंतजार रह जाता है। आती है याद लेकिन नहीं आता वो जिसका वो इंतजार।